0: أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم.
1: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट UK ऑफिस 03001237474.org.uk।
3: If you fall asleep at the wheel, you'll put your life in danger and the lives of others as well. Before you feel tired, pull off the road into a services or other safe area. Drink some strong coffee and take a quick nap while the caffeine kicks in.
4: If you're having a nap, you've left your lights on, sir.
5: Aye, cheers.
3: Think. Don't drive tired.
6: From the studios of Inspire FM, the time is now 5:30.
7: Assalamu alaikum. It's now time for the beautiful recitation of the Holy Quran with English translation by Sheikh Abdul Rahman Al-Sudais and Sheikh Saud Al-Shuraim.

0: Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
1: होशियार रहें, कुछ लोगों ने फ्रॉड का एक नया तरीका अपना लिया है। वो आपके घरों पर इंस्पायर एफएम और दिगर चैरिटीज के नाम पर चंदा मांगने आते हैं। इनको कुछ भी देने से पहले इनका आईडी कार्ड या फिर इस चैरिटी से राब्ता करके तसल्ली कर लें कि कहीं आप गलत शख्स को रकम तो नहीं दे रहे। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

0: And welcome Dallas Fort Worth and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.
1: आपने थॉट्स के साथ भी ऐसे ही करना होता है, रिश्तों के साथ भी ऐसे ही करना होता है, बिजनेस में भी ऐसे ही करना होता है. मैं पीछे हट जाता हूँ और उस वक्त मैं कोई भी वॉइस नोट रिकॉर्ड करने से, कोई भी बात करने से, कोई भी चीज़, क्योंकि अब जजमेंट क्लाउडेड हो गई है, अब मैं उसको उस तरह डील नहीं कर पाऊंगा, तो पीछे हट जाएं. तो जितने भी मेरे दोस्त मेहरबान लोग होते हैं, मैं उन्हें हमेशा कहता हूं, जब सोच के गुंजल बनने लगे या आप गोल गोल घूमने लगे या आपको लगता है कि अब मैं थक गया हूं या गलत मुझसे काम हो जाएगा, तो दो तीन चीज़ ना किया करें. एक तो फैसला कोई ना किया करें, दूसरा मुंह से अल्फाज निकालने से पहले, कोई ईमेल सेंड करने से पहले, कोई वॉइस नोट करने से पहले, किसी चीज़ पर साइन करने से पहले, किसी अपने दोस्त को जिनसे आप इज़्ज़त प्यार करते हैं, जिनकी आपकी ज़िंदगी में बड़ी वैल्यू है, उनको कॉल बिल्कुल मत करें. उनकी किसी बात पर इरिटेटेड ना, फिर भी आप उनको तंग ना करें. पीछे हट कर टाइम दें. आपको लगेगा ये जैसे ही इम्पल्स उतर जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता आपका गुस्सा, आपकी तकलीफ, परेशानी, इरिटेशन बैठ जाएगी, आपका पर्सपेक्टिव ज़्यादा क्लियर होगा. फिर जब आप इस चीज़ को एंगेज करेंगे तो टोटल डिफरेंट एनर्जी के साथ करेंगे आप. ठीक है हीरा सिंह जी?
2: अक्सर करते हैं ना, अगर आपके किसी को कोई प्रॉब्लम है और आपने उसको फिक्स कर लिया है, और यू शुड कम ऑन द एयर एंड टेल द अदर लिसनर्स हाउ यू डिड इट, एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई डिड इट. नाउ आई टैकल माय प्रॉब्लम्स, आई डोंट टैकल देम ऑन द स्पॉट. I step back and give myself something productive to do, something I'm good at. Like I'm good at making coffees, I'm good at make cooking. मैं कुछ भी अपने आप को कुछ अलग टास्क देके, then I get back into it and I seen the results. आप इतने अच्छे और इतने बढ़िया फैसले लेते हो और सुकून के साथ, you can sit back that you've taken this decision for yourself and your family and anyone around you. बहुत अच्छा महसूस होता है. और अंदर से जो मोस्टली हमारी जो प्रॉब्लम है खास करके देखते हैं कि वी फोकस ऑन व्हाट वी आर मिसिंग, जो हमारी जिंदगी में लैक है ना, हम उस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. एग्जैक्टली. एंड इट गिव्स मी सो मच न्यू पर्सपेक्टिव, सो मच एंड बहुत अबंडेंस ऑफ एनर्जी टू फोकस ऑन अदर थिंग्स.
1: आपको मैं एक बात बताऊं, जब मैं बहुत ज्यादा किसी चीज पे कोशिश, अभी मैं एक दो काम करने की कोशिश कर रहा हूँ 3-4 साल से, तो वो बिल्डअप हो रहा है प्रेशर, क्योंकि क्रिएटिव काम है, लिखने का काम है, फिल्म का काम है, स्टेज प्लेस का काम है, अब वो हो नहीं रहा 3-4 साल से, और वो कोविड के बाद से सब कुछ ही उलट गया है. इवन यू नो स्लीप साइकिल से लेके बहुत सारे जो काम थे, और फिर उसको ग्रिप करने के लिए मुझे साल एक लग गया उन तमाम चीज़ों के ऊपर. तो मैं जब भी, या मैं कोई ऐसा काम करता हूँ जिस पर मुझे लगता है अब ये काम हो जाएगा और वो काम नहीं होता, तो एक आध मिनट या एक आध घंटा या कभी कभी एक आध दिन लग जाता है उसमें से बाहर निकलते हुए. लेकिन उसमें निकलने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, अच्छी सी चाय पीते हैं आप, अच्छी सी गप लगाते हैं आप, अच्छी सी एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी सी मूवी देखते हैं, आराम से सोते हैं. और साथ साथ मैं ये सोचता हूँ कि मेरे पास एक चीज़ जिसके लिए मैं कोशिश कर रहा था वो अगर नहीं मिली तो मेरे पास है क्या क्या, किस किस्म के लोग हैं मेरे पास, किस किस्म के एसेट्स हैं, रिसोर्सेज हैं मेरे पास, और किस किस्म की इज्जत प्यार मोहब्बत की ज़िंदगी है मेरे पास. एक चीज़ नहीं भी हुई तो क्या होगा, दोबारा कोशिश कर लेंगे, फिर कभी हो जाएगा, इसके साथ नहीं हुआ तो किसी और के साथ हो जाएगा. लेकिन इस वक्त को मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ, और वो वाली बात, पंजाबी तुसी आदमी हो, पंजाबी भी तन दसना, अपना रंजा राजी रखना बहुत ज़रूरी है. रांझा जब नाराज हो जाता है ना, तो हीर जो है ना उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती, तो बिल्कुल इसी तरह जो आपका रांझा है ना वो आपके अंदर रहता है. तो जब वो थक जाता है, फंस जाता है, इरिटेट हो जाता है, नाराज हो जाता है, दुखी हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, तो उस रांझे को राजी रखने के लिए, उस रांझे को, सोने को जो चीज़ पसंद है उस पे ध्यान दें, जोर मत लगाएं उसके ऊपर ना. और ये बाहर के लोगों के लिए भी है, जब भी आप किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं, किसी मकसद से मोहब्बत करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी मकसद के साथ आप अटैच्ड हैं, कोई ज़िंदगी में एक्सेलेंस अचीव करना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा इंसान है या इन्वायरमेंट है, कुछ भी है, उस पर जोर लगाने की कोशिश मत करें. हम जोर जब जिम में भी लगाते हैं तो कुछ ना कुछ तोड़ बैठते हैं, रिश्तों में भी जब हम बहुत जोर लगाते हैं, बेशक आप सही हों, बेशक जो आप चाह रहे हैं वो सही है आपके हिसाब से, लेकिन फ्री विल रब ने एक ऐसी चीज़ पैदा कर ली हर इंसान की ज़िंदगी में, उसको दे दी उसने, जिससे इस पूरी दुनिया का ड्रामा, ये पूरी दुनिया की फिल्म, ये पूरी दुनिया का उतार चढ़ाव सिर्फ एक फ्री विल के ऊपर है. और अगर आपने ज़िंदगी में अपनी फ्री विल, अपनी पे आप काम कर सकते हैं, दूसरे के ऊपर आप उसको फ्री विल का हिस्सा बना के आप डिसीजंस नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं और वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है या वो और तरह से कोई पर्सनैलिटी है, तो ये काम हमेशा खटाई में पड़ जाएगा। एक और बात याद रखिए, हम में से बहुत सारे लोगों को ये जोहम भी है,

0: ये कीड़ा भी है कि हम इंसानों को ठीक कर लेंगे, या कोई इंसान आपसे मोहब्बत करता है तो देखें जी वो इंसान ने आपसे मोहब्बत किया, उसने मेरे लिए ये छोड़ा वो छोड़ा, या उन्होंने हमारे लिए ये कुर्बानियाँ दी, तो अब मैं इस इंसान को जो डैमेज्ड है, चाहे लेडी है कोई चाहे कोई जेंटलमैन है, तो अब उन्होंने हमारे लिए इतना छोड़ा है, तो मैं अपने आप को ये एक ईगो बूस्ट भी है, और ये उन्हें एक रिकग्निशन होती है कि मेरी खातिर उन्होंने ये सब कुछ छोड़ा है, याद रखिएगा, और अब मैं उनका साथ दूंगी या उनका मैं साथ दूंगा, वफा करूंगा, और अब मैं किसी ड्रगी से उसकी ड्रग छुड़वा दूंगा, या मैं अल्कोहलिक से उसका अल्कोहल छुड़वा दूंगा, या मैं किसी एक टेम्परमेंटल आदमी से, और जो उसके बहुत सारे और हाथ छुट आदमी है या और कोई मसाइल हैं, उस आदमी को टेम करके मैं उसको ठीक कर लूँगा या ठीक कर लूँगी। ये 100% वो बैटल है जो आप हारेंगे, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट यू एंड द अदर पर्सन, इट्स यू आर फाइटिंग अगेंस्ट अ नेचर, अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट हैज हैपेंड इन दैट पर्सन्स लाइफ, द रिएक्शन ऑफ दैट पर्सन टुवर्ड्स द एक्शन दैट हैज हैपेंड टू हिम, उसका सोचने का तरीका, उसको चीज़ों का डील करने का तरीका, उसकी वीकनेस, और उसका एक जो पूरी जिंदगी 40 साल में या 30 साल में या 26 साल में या 50 साल में बनी है, या कोई ऐसा दोस्त आपको मिल गया जिसको लगता है आप उसको फिक्स कर देंगे। यू कैन नॉट फिक्स ह्यूमन बींग्स अनलेस दे वॉन्ट टू फिक्स देमसेल्व्स, एंड वेन दे आर डूइंग दैट यू कैन जस्ट बी अ सपोर्टिंग रोल इन देयर लाइफ, नॉट द पिविटल रोल और नॉट द लीड रोल इन देयर लाइफ। किसी भी इंसान ने अगर ये गलती की, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 साल की ज़िंदगी आप ज़ाया कर सकते हैं, बट ये कभी नहीं होगा, क्योंकि ये फ्री विल का जो रब ने एक चीज़ बनाई है उसके मुताबिक इंसान आहिस्ता आहिस्ता मजमूआ है, वो एक जर्नी है पूरे का पूरा जो अभी आपके पास आया है, और उसको लगता है कि आप उसको बचा लेंगे, या किसी लेडी को लगता है कि आप उनको बचा लेंगे, इस कोई किसी को नहीं बचा सकता। आपने खुद जो किया है, जैसे आप हैं, जैसे आप चीज़ों को डील करते हैं, अपने पुअर इंपल्स कंट्रोल को आप कैसे डील करते हैं, अगर आप एडिक्टेड हो गए हैं किसी चीज़ से, सब्सटेंस से लेके इंसानों से लेके एनवायरनमेंट तक, वो भी उसको कैसे डील करना है, ये भी आपका अपना तरीक़ेकार और आपका ये काम है। जितने लोगों को ये गॉड सिंड्रोम, एक इंसान होता है कि जी मैं क्लासिक फिक्सेस होते हैं साइकोलॉजी में, जो मसले लेके उनको लगता है कि वो फिक्स कर लेंगे, एक हद से आगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो जब भी आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं, फैमिली हो चाहे ब्लड रिलेशनशिप हो, चाहे सेंटिमेंटल कोई लव के रिलेशनशिप्स हैं या फ्रेंडशिप्स हैं, उसमें भी एक हद से आगे वो तो डूबा है, आपको भी डुबोएगा। ये ऐसे ही होता है और ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, क्योंकि काम अपना अपना करना होता है, और जो भी सपोर्टिंग रोल में होता है उसको समझना है कि लीड रोल का अपना एक काम है, जो उसकी अपनी ज़िंदगी है, उसकी अपनी मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, फाइनेंशियल हेल्थ है, अपनी मकसद की उसकी ज़िंदगी की जो हेल्थ है, ये तमाम उसके अपने मसाइल हैं, और उसमें से वक्त निकाल कर, टाइम निकाल कर, अपनी एनर्जीज रिसोर्सेज किसी को हेल्प करने के लिए आप यूज़ करते हैं तो आप ज़रूर करें, लेकिन एक हद से आगे नहीं किया जा सकता, वरना काम का बंदा भी आप बर्बाद कर देंगे एक नाकाम या नाकारा बंदे के साथ साथ। जो जो डैमेज गुड्स होते हैं उनको एक हद तक ही थुक थिगड़ी लगाकर ठीक किया जा सकता है, उसके बाद जो उनकी जो क्रीकिंग साउंड होती है या उनको जो दीमक लग जाता है वो एक रियलिटी है, उसकी जो उसके ऊपर उस कुर्सी के ऊपर, उस सोफे के ऊपर, उस मेज़ के ऊपर भी जब आप बैठते हैं तो कितने ध्यान से बैठते हैं, और एक दिन धड़ाम से वो गिर जाती है वो चीज़, क्योंकि इंसानों के साथ भी ऐसे ही होता है। तो जब तक उस और पोटेंशियल पे नहीं जाना है, एक और बीमारी हम लोगों को बहुत है, हम में भी थी और भी लोगों में होती है, कभी कभी हम बंदा फंस भी जाते हैं उसके अंदर, कि इस इंसान में बड़ा पोटेंशियल है, ये इंसान को बहुत बड़ा कमाल कर सकता है, ये लेडी जो है लिख कर करके या उसके अंदर ऐसी ज़बरदस्त खासियतें खसूसियात हैं कि एक दिन ये बन जाएगी। रिश्ते फ्यूचर में नहीं बनाए जा सकते, रिश्ते किसी भी किस्म का रिश्ता प्रेजेंट में बनेगा, प्रेजेंट में आप जो ऑन टेबल लेके आ रहे हैं, जो आप हैं उसकी बेस पे डील बनती है। एक कंपनी जब आप खरीदते हैं या उससे मर्ज करते हैं तो इस वक्त उसकी जो नेटवर्थ है या उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हिसाब से आप उसको पे करते हैं या उसको आप ब्लेंड इन करते हैं अपने साथ, उसकी 20 साल के बाद क्या वैल्यू होगी, ये चीज़ें उस वक्त नहीं, आप इसकी वर्थ के ऊपर आप उसको थोड़ा बहुत इंसेंटिव दे सकते हैं, लेकिन ये सब इस वक्त की वर्थ के ऊपर करना है आपने। हम में से बहुत सारे लोग इंसानों में, रिश्तों में ये गलतियां करते हैं कि जी इसमें पोटेंशियल बहुत अच्छा है, ये ऐसा कर सकता है या वैसा कर सकती हैं, बिल्कुल नहीं। वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, वो कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, 20% भी करेंगे तो क्लैरिटी में क्या करेंगे, 80% बेशक ना करें, लेकिन डील सिंपल और क्लियर होती है। और जैसे ही उनको वो चीज़ मिल जाती है, आपने देखा है जिस दिन कागज़ पे साइन हो जाता है उसके बाद लोगों के सोचें बदल जाती हैं, जहन बदल जाते हैं, और वो जो जिस चीज़ के लिए मर रहे होते हैं जब वो चीज़ हाथ आ जाती है तो वो टोटली और लोग हो जाते हैं। इंटरेस्ट इंटैक्ट कैसे करना है, स्लोली एंड ग्रेजुअली चीज़ों को बढ़ाना कैसे, अपना रोल को डिफाइन करके उसको एक्सेलेंस पे कैसे पहुंचाना है, कैसे रुकेंगे इस बात से कि दूसरे के 80% या 70% या 30% या जो 50-50 की डील हुई थी उसमें जाकर नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। मैंने कितने लोगों के साथ बिजनेसेस किए, कितने लोगों के साथ मेरे हर किस्म के रिश्ते हैं, हर आदमी अपना काम छोड़ के दूसरे के काम में टामक टोइयां मारता है और उस बदबख्त को इतना भी नहीं पता होता कि चलता फिरता बिजनेस फलता फूलता हुआ रिश्ता या बिजनेस या कोई भी चीज़ बर्बाद हो जाएगी। लेकिन इनसिक्योरिटी और कॉम्प्लेक्सेस में जब आप होते हैं और कंट्रोल चाहते हैं उन चीज़ों का, और कंट्रोल के बारे में भी याद रखिएगा, कंट्रोल सिर्फ उस आदमी को सूट करता है जो कंट्रोल नहीं चाहता। वो अपने काम में इतना अच्छा होता है या इतनी अच्छी होती हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मजबूरी बन जाती है उस घर की, उस सिस्टम की या उस ऑर्गेनाइजेशन की, कि उस बंदे या बंदी को कंट्रोल दे दें बिकॉज उस काम के साथ डेडिकेटेड है और उसमें वो रिजल्ट ले आया है। लोग आपको कहेंगे कि आप हेड बन जाएं, आप प्रेसिडेंट बन जाएं, आप इस कंपनी के फ्लां रोल जो है वो आप ले लें। कम्युनिटी में लोग आपसे कहेंगे कि क्यों आप क्यों नहीं ये बन जाते, आप क्यों नहीं बन जाते, आपके पीछे आते हैं। और जो लोग कहते हैं ठीक है देखेंगे समझेंगे इसके साथ ये तमाम चीज़ें हैं, फिर ये मेरी कंडीशंस हैं, ये अगर आप पूरी करते हैं तो मैं ये काम करता हूँ, ऐसे लोगों को कंट्रोल खुद ब खुद आ जाता है। जो लोग भी कंट्रोल अपने पास रखने की कोशिश करते हैं वो कहीं ना कहीं कोई कमजोरी होती है, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ डर होता है जिसकी वजह से वो ऐसे करते हैं, या उनको ये पता होता है कि दूसरा बंदा इस काबिल नहीं है कि इसको कंट्रोल कर पाए, लेकिन वो चाहता, या तीसरा बंदा, चार लोग भी हो सकते हैं एक ग्रुप के अंदर, या फैमिली में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो कंट्रोल चाहते हैं लेकिन वो डिजर्व नहीं करते। जो आदमी भी कंट्रोल चाहेगा ज्यादातर वो डिजर्व नहीं करता। और कौमों का भी यही अलमिया है, अलमिया भी है कि ये सॉरी अलमिया है कौमों का भी यही लफ्ज़ भी उतने सालों में आपने यूज़ नहीं किए होते ना, तो कौमों का अलमिया भी यही है, आयरनी है ये। और इसी में इंसान, बहुत सारे लोग जो पावर चाहते हैं वो उस पावर के काबिल नहीं होते। तो घरों में भी यही है, ऑर्गेनाइजेशंस में भी यही है, और ज़िंदगी में भी यही है। और जब भी आप ज़िंदगी में ऐसे लोग और ऐसे काम देखें तो मेरा बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है, आई जस्ट स्टेप आउट, इट्स जस्ट वेस्टेज ऑफ टू मच टाइम एंड एनर्जी। जब आपको जो चीज़ नज़र आ रही है और जो चीज़ कि आप एक्सपर्ट हो चुके हैं 25-30 साल करते करते, उसमें अगर आपकी सुनवाई नहीं है और जो आपकी जगह है वो नहीं बनती, तो लड़ाई झगड़े अदालतें हैं, टाइम ज़ाया, दुनिया में इतना वक्त नहीं है। उधर एक अदालत है, उसमें भी अच्छा खासा मामला खड़ा होगा वहाँ पर। ये दुनिया की छोटी मोटी मसाइल, छोटे मोटे पैसे, छोटे मोटे कागज़ों के पीछे अपनी ज़िंदगी हल्कान करने के बजाय एमिकेबल तरीके से आप चीज़ों को डील करें, जो भी लेना देना है वो दें, नहीं कुछ मिलता है तब भी जाने दें, आगे जो आप चीज़ बनाएंगे, क्योंकि आप तो आप हैं, आप एसेट हैं, आपकी सोच एसेट है, आपका काम एसेट है, आपके मिलने मिलाने वाले लोग खुद कहीं ना कहीं से चीज़ बन जाएगी जो 25-30-40 साल की ज़िंदगी आपने गुजारी है। जस्ट लेट गो ऑफ दीज थिंग्स एंड स्टार्ट अ फ्रेश। डरे मत ज़िंदगी को बार बार फ्रेश स्टार्ट करने से। मैं 3 दफ़ा स्टार्ट कर चुका हूँ, 4th दफ़ा स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो कुछ मैंने सीखा जिस डेकेड में, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू, कहीं नहीं जाता ये सब कुछ। जो कुछ भी आया, साथ लेकर नहीं आए थे पैसे, साथ लेकर नहीं आए थे पावर, साथ लेकर नहीं आए थे ये रिस्पेक्ट और मोहब्बत, ये सब अलॉन्ग द वे आपको मिली है। देने वाले ने ये दिया है, वो आगे और भी देगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा ढीला छोड़ के लेट इट गो, और फिर आप देखें कैसे चीज़ें आपके पास आती हैं। जैसे ही आप चीज़ें छोड़ के पीछे बैठेंगे, आप देखें सब कुछ आपके सामने खुल जाता है। और फिर गालिब ऐसे नहीं कहते, बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है तमाशा शब रोज़ मेरे आगे, यानी कि बच्चों का प्ले ग्राउंड है ये दुनिया मेरे आगे, और रोज़ मेरे आगे ये सब तमाशा होता रहता है। जानने वाला जानता है, बनाकर फ़कीरों का हम बेस गालिब, तमाशा है अहले करम देखते। ठीक हो गया सर?
1: I can't wipe the smile off my face.
0: शुरू कहाँ से हुई थी, खत्म कहाँ हुई?
1: वही बात है सर।
0: आपको बोर करना हमारा मकसद नहीं है, आपकी बात को लोगों तक पहुंचाना, उसका एक ऐसा क्लिप बनाना जिससे बहुत सारे और लोगों की भी आसानी हो और वो भी शेयर कर सकें, ये बेसिकली हमारा मकसद है। और कभी कभी, क्योंकि आपकी जॉब आजकल ऐसी है कि कभी कभी आपको मौका मिलता है, लेकिन अब हमको यकीन हुआ कि जब भी आपको मौका मिलेगा आप खुद बखुद आ जाएंगे, क्योंकि आपने मजा चख लिया है।
1: बिल्कुल, और ये मजा ऐसा है सर, अभी मैं अभी आपसे बात कर रहा था, आपसे सिर्फ सुनने में नहीं ना, मेरे पूरे गेटिंग गूज बम्प्स ऑल ओवर माय बॉडी लाइक इन इन ए गुड वे.
0: वो इसलिए
1: मुझे
0: है, वो
1: बहुत
0: इसलिए
1: अच्छा
0: कि जब
1: महसूस हो रहा है.
0: वंस यू आर कनेक्टेड विद ट्रूथ, व्हेन यू आर कनेक्टेड विद रियलिटी, व्हेन यू आर कनेक्टेड विद द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड दैट इज कमिंग फ्रॉम यू, फ्रॉम द ऑडियंस एंड द काइंड ऑफ लव, केयर एंड रिस्पेक्ट वी हैव फॉर दिस प्लेटफॉर्म. इसके ऊपर जो भी बात की जाएगी, लोगों को इसकी इंटेंशन का पता है, लोगों को इसकी इंटेंट और जो कंटेंट है और इसके अंदर जो हमारी कंटेंटमेंट जो इससे हमें मिल सकती है और आसानी पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है, वंस यू आर यू नो काइंड ऑफ इन टच विद इट और उसके साथ आपके जो है ना कनेक्शन, यू बिल्ड अ कनेक्शन विद इट, सो एनर्जी का फ्लो ट्रांसफर ऐसा हो रहा होता है कि आपको लगता है ये आपके दिल की आवाज़ है, यही आप कहना चाहते हैं, यही आप सुनना चाहते हैं और यही वो बात है जो कभी कही नहीं गई, कभी सुनी नहीं गई और कभी बोली नहीं गई. और अगर ये वक्त पर हो जाती तो हम अब तक हमें पर लग गए होते और हम उड़ रहे होते बजाय इसके कि हम रेंग रहे थे.
1: सर अभी मैं आई जस्ट आस्क यू वन लास्ट क्वेश्चन एंड कॉन्फिडेंस एंड डिसीजन मेकिंग, व्हाट्स द कोरिलेशन?
0: दोबारा पूछिए.
1: कॉन्फिडेंस एंड डिसीजन मेकिंग, इनमें क्या रिलेशन है?
0: देखें, दो तीन चीज़ों को पहले आपने समझना है. ये सारी चीज़ें एक दरख्त जैसे लगा होता है ना, उसकी एक रूट होती है, फिर उसके ऊपर एक स्टेम होती है, स्टेम के ऊपर फिर ब्रांचेस निकलती हैं, ब्रांचेस के बाद पत्ते आते हैं, फल फूल आते हैं, ठीक है, फूल निकलते हैं, फिर उससे फल बनता है, फिर वो झड़ता है. ये पूरा एक प्रोसेस है. ये जो ट्री ऑफ लाइफ भी आप इसको कह सकते हैं, इससे सब कुछ सीखा जा सकता है. आपको ये क्वेश्चन कॉन्फिडेंस और रिलेशनशिप बिल्डिंग जो है, कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग जो है, डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस है, कॉन्फिडेंस एक टूल है जो कि इसके लिए इस्तेमाल होगा. और भी बहुत सारे टूल हैं, एक्सपीरियंस जिंदगी का, क्लैरिटी ऑफ माइंड एक और टूल है, आपकी फाइनेंसेस एक और टूल है, आपके रिसोर्सेज एक और टूल है, आपके रिलेशनशिप्स विद पीपल ये एक और टूल है. ये सब चीज़ें जब एक जगह पर मिल जाती हैं तो यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू मेक अ गुड राइट डिसीजन. इसके अलावा आपका बायस्ड ना होना एक और बहुत अच्छा टूल है, आपका ऑब्जेक्टिव होना एक और बहुत अच्छा टूल है, आपका ये इस टाइम के ऊपर किस वक्त आप ये डिसीजन ले रहे हैं, उस डिसीजन के प्रोज एंड कॉन्स कौन से हैं, उसके पैकेज डील में आप कितने रियलिस्टिक होना एक और टूल है, कि कितने रियलिस्टिक हैं आपके इस वक्त जो भी आप जिस सिचुएशन में हैं, जिस टाइम एंड स्पेस के अंदर आप गुजर रहे हैं, उस वक्त आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब आप फैसला लेंगे इन तमाम चीज़ों को सामने रख के, और उसमें एक चीज़ अगर आप डाल देंगे तो कुदरत का वो कानून आपने ट्रिगर कर दिया जिसका फ़ायदा हो ही हो. ये फैसला करते हुए आपकी इंटेंशन क्या है, अगर इसमें दूसरे बंदे की या दूसरी पार्टी की भलाई अगर आप शामिल कर लेंगे तो आपने कुदरत का कानून ट्रिगर कर दिया. दूसरे की भलाई सोच कर ऐसे डील करना कि उसका भी फ़ायदा हो, आपका भी फ़ायदा हो और रिश्ते का भी फ़ायदा और एनवायरमेंट का भी फ़ायदा हो, अगर आप ये कर सकते हैं तो इससे बेहतर और कोई डील नहीं. तो ये चीज़ों की को रिलेशन भी इस वक्त आ गई और साथ साथ आज जब जिन्होंने याद कराया था शहनाज जी ने बहुत ही अच्छा ट्रैक, तो ये वो रास्ता है चलने का, आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से आपने चलना है, स्टर क्रिएट नहीं करना है खाम खा का, तूफान चाय की प्याली में नहीं उठा के खड़ा कर लेना. जब कहीं जाना है तो तैयारी के साथ अपने सही मौके का, सही वक्त का इंतज़ार करना है, फिर वहाँ पर वो चीज़ करनी है और वो चीज़ निकालनी है, वो चीज़ दिखानी है जिसका वक्त आ गया है. अपने वक्त पर आया हुआ आइडिया सब कुछ है, उसी को पैटेंट कर लेना वो एक और बड़ा कमाल काम है. सो ये जब हमें समझ आ जाएगा, और ये सब स्लोली एंड ग्रेजुअली होगा, बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत जल्दी ज़िंदगी में चाहिए थी लेकिन उसका वक्त नहीं था, उसको पाने के लिए फिर इंसान गलतियां करता है. कुछ गलतियां मिस्टेक्स होती हैं जिससे आप सीख सकते हैं, लेकिन कुछ गलतियां ब्लंडर्स होते हैं जो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं. तो आपने ये ज़रूर समझना है कि ज़िंदगी में आप गलतियां ज़रूर करें, क्योंकि उससे आप सीखेंगे, समझेंगे और उसमें आपके अंदर डेप्थ पैदा होगी, क्लैरिटी ऑफ माइंड पैदा होगी, व्हाट यू वांट व्हाट यू डोंट वांट क्लियर आपको होगा. लेकिन जब आप बिना देखे जज्बात में, बिना सोचे समझे दूसरों की देखा देखी, किसी के डर से ब्लेंड इन करने के लिए, किसी की तरह बनने के लिए आपने वो डिसीजन ले लिए जो आपकी नेचर के अगेंस्ट हैं, या जो आपकी वीकनेस है वो उससे बाहर निकल के खुल के सामने आ गई, तो उसको ब्लंडर कहते हैं. और वो ब्लंडर्स जो हैं, फिर जब आप उसमें से निकलने की भी कोशिश करेंगे तो पूरी तरह निकल नहीं पाएंगे और उसका जो नुकसान हुआ है वो पूरी ज़िंदगी आपके साथ चलेगा. तो ये ज़रूर आपने सोच लेना है कि मिस्टेक्स करें क्योंकि पुरानी गलतियां क्यों करनी है, और गलतियां नहीं करें, क्योंकि गलतियों से आदमी सीखता है। तो बार बार एक गलती जो सीख रहा है उसका मतलब यू नो डूइंग सेम थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट इज कॉल्ड इंसैनिटी। ये जुमला जिस दिन मैंने पहली दफ़ा सुना था वो मेरी ज़िंदगी बदल गई थी इस जुमले को सुन के, क्योंकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी को सामने रख के कसौटी में ये चेक किया था कि यार ये कितना मैंने किया है, और फिर सब बदल गया था। और मेहरबान थे वो भाईजान जिनके मुँह से ये अल्फाज निकले और लोगों तक पहुँचे, आइंस्टाइन थे, तमाम मेहरबान लोग जिन्होंने पहले आवर में बहुत घमसान का रन पड़ा जी, बहुत मज़ेदार किस्म के क्वेश्चंस और पॉइंट्स ऑफ व्यू आए। उम्मीद करते हैं इससे कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लोगों के गोश गुजार हुई होंगी। बीच में बहुत सारा अपनी अम्मा का हमारा फेवरेट ट्रैक आपने सुना, चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। तो ये ना वो उस ज़माने में ना नाक से बहुत सिंगिंग मतलब बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन एक्सप्रेशंस के साथ अगर आप सिंगिंग कर सकते हैं ना, तो कुछ लोग उनके नाक जो नाक चढ़ा के बहुत अच्छा एक्सप्रेशन देती थी, ये तरन्नुम नाज़ होती थी, फरीदा खानम थी, उसके अलावा द लेजेंडरी नाहिद अख्तर। लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा जो आप चेक कीजिएगा इस गाने को, वो नाक के साथ कितना अच्छा एक्सप्रेशन देती हैं, क्यूट। कोई है जी हमारे साथ रेडियो आज़ाद यू रोने, हेलो
2: अस्सलाम वालेकुम आजाद लाला।
0: वालेकुम अस्सलाम, आवाज थोड़ी बीमार बीमार है, कैसी हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ आजाद लाला, पहले से बहुत बेहतर।
0: अब आप बिल्कुल फिर घोड़े की तरह फिट हो जाएंगी,
2: बिल्कुल सही।
0: कभी इधर भागेंगी कभी उधर भागेंगी, कहीं जहाँ चारा नजर आएगा वहाँ खड़ी हो जाएंगी।
2: आपने वो बना भैंस बना,
0: पानी नहीं नहीं घोड़ा का है हमने, लंबी रेस का घोड़ा, जो पानी जहाँ मिल जाता है अच्छा फ्रेश पानी, ग्रीन पैस्चर्स में दौड़ता हुआ लंबे बालों के साथ, यू नो हमने सारा फील भी कर लिया उसको।
2: वाओ जबरदस्त।
0: अभी एक फिल्म आई है उसमें घोड़े का नाम भी आजाद है, वो क्या काला उन्होंने कमाल घोड़ा अरबी कहीं से उठाया है, क्या उसकी उठान है और क्या उसकी बांकपन है उसकी, मजेदार।
2: ये कौन सी फिल्म है आजाद लाला?
0: ये फिल्म है, नाम है उसका आजाद।
2: अच्छा ठीक है, नहीं आजाद लाला अब तो काफी बेहतर हूँ मैं, और इतना अच्छा लग रहा है आजाद लाला, बल्कि मैं सोच रही थी मैंने कहा हम कैसे छोटी छोटी चीजों को जैसे इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपना बटन बंद करते भी मुश्किल हो रही थी, चम्मच उठाना भी, मुंह खोलना, और ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं और बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भाग रहे होते हैं। और ये अल्लाह ताला की कितनी नेमतें हैं, लाइक जब हम अपनी दिस स्मॉल थिंग्स वी जस्ट इग्नोर।
0: अगर आप सीखना चाहें ना और अपनी औकात जानना चाहें, पिछले दिनों वैसे ही मेरा उंगली ऊपर से ना स्किन कट गई, तो एक तो वो खून बहुत आ रहा था, पता नहीं कैसे हुआ, तो किसी चीज़ के साथ लग गया तो एकदम, तो वो पे जाए ही ना, मैं जितना उसको रोकूं वो करे, फिर खैर मैंने उसको बांध दिया। फिर उसके बाद बर्तन धोते हुए, हाथ मुंह धोते हुए, वुजू करते हुए, स्विमिंग करते, हर वक्त उसी का ख्याल रहता था। और वो और उसकी जलन भी जानी, क्योंकि वो स्किन का कोई ऐसा पार्ट था, वो पानी गर्म लगे तो जलता था, ठंडा लगाए तो जलता था, तो दो तीन दिन तक ना पता चला कि इंसान, ये कहते हैं जी कुछ दिनों की आग होगी, अरे भाई आग को छोड़ो, थोड़ी सी स्किन उतरी है, हवा पास से गुजरती है तो इतनी तकलीफ हो रही थी। तो ये लोग, हम लोग ना देखते सोचते समझते नहीं है बात करने से पहले, और दुनिया के जहन्नुम में रोज जल रहे होते हैं हम, और उसी की तपिश में लोगों ने क्या किया, अभी तिक्के अपने बना लिए हैं, थोड़े थोड़े तिक्के बना के खाते रहते हैं, लेकिन आग लगी हुई, अंगार पखे हुए हैं, हवा शवा लगा देंगे, जो ज़्यादा डेढ़ सियाने उन्होंने साथ पंखा लगा दिया कि वो परमानेंट हवा लग जाए, हाथ के भी तकलीफ नहीं करना चाहते ना, ताकि यू नो वो ट्रिगर थम नहीं हो, तो जो सारी चीज़ें टेंडनाइज सारी चीज़ें भी ठीक हो सकती हैं, साथ बंदा एक्सरसाइज ही कर ले हाथ की, नहीं जी उन्होंने कहा नहीं हम पंखा लगा लेंगे।
2: लेकिन वाकई हमें अल्लाह का बहुत ज्यादा शुक्र अदा करना चाहिए हर इन चीजों पे, लाइक वी शुड बी सो ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग।
0: शो ने हेल्प की साथ जो करनी चाहिए उसको
2: बहुत ज्यादा आजाद अल्लाह, मैंने आपकी जैसे पिछले शोज आपके जो अभी गुजरे हैं उन उन उनको सुनना शुरू किया, वो
0: कैसे थे, बहुत अच्छे शो थे, पिछले दो बहुत ही अच्छे थे।
2: हाँ जी बिल्कुल, उनमें से एक मैंने सुना है, अभी दूसरा रहता है मेरा, तो
0: सुना आपने जिसमें कहा जब तक आप पूछेंगे नहीं मैं बताऊंगा नहीं, और आपने कहा जो कुछ पूछेंगे मैं वो सब बताऊंगा, और उसका रास्ता भी बताऊंगा, प्लान भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पूछेंगे आप, बजाय इसके कि सिर्फ हमें कहते रहे कि आप ऐसे हैं आप वैसे हैं, आपने ये पा लिया वो पा लिया, कैसे पाया, क्यों पाया, क्या हुआ, वो पूछें, रास्ता कौन सा है, जो भी आप पूछना चाहते हैं पूछें, तो उसका जवाब आएगा। और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी, दिस इज आजाद साइनिंग ऑफ, यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड
3: पे जा सकते हैं मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना जरूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आजाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आजाद। दुआ में याद रखिएगा, जिंदगी ली तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियां पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
1: Last time on Akhri Mojza.
2: Quran ki lazzat jo hai na, yaar ne kya lafz istemal kiya hai, kya tabeer istemal ki hai. Main chahta hu ki Arbi zuban to hum itni aam kar dein aur itni aasan kar dein sabke liye ke इस किस्म के प्रोग्राम की जरूरत ही ना रहे. आज से 10 साल बाद जरूर सबको बताओ ये बात, ये आम हो जाए. और ये मुमकिन, ये कोई गैर मुमकिन किस्म की बात नहीं है, कोई ये बहुत ही ख्वाबों वाली बात नहीं है, ये बहुत मुमकिन है. कोई ऐसा बड़ा मसला, कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं है ये. और ये मैं नहीं कह रहा कि ये सब कर सकते हैं, लेकिन अगर इस मुल्क में करोड़ों में से हजारों भी कर सकते हैं, लाखों भी कर सकते हैं, तो वो लाखों फिर पूरी जनरेशन को बदल सकते हैं. तो हम सब हमारी मेंटेलिटी में हो गया है ऑल और नथिंग, या तो सब करें या कुछ भी नहीं हो रहा. और दुनिया में जो सारी तब्दीली आई है ना, वो कुछ लोगों के हाथों से आती हैं, सबके हाथों से नहीं आती, बाकी सब फॉलो करते हैं.

ये मेरी सबसे फेवरेट तबीरात में से है, मुहावरों में से है कुरान के, अलम तर अन्नहुम फी कुल्ली वादिन यहीमून, ये शुअरा के बारे में कहा है। वश्शुअरा यत्तबिउहुमुल गावून, सो तो शुअरा के आखिर में, शुअरा का लफ्ज़ वही है जो अरबी में है जो उर्दू में है, लेकिन उसमें एक फ़र्क जान लें, शुअरा शायर, उर्दू में भी शायर कहते हैं ना, शायर आता है मशअर से, मशअर अरबी में लफ्ज़ है मशअर, और शेरा और शेर, शेर अरबी में असल में कहते हैं जज्बात को, अशआर और मशायर जज्बात का लफ्ज़ है अरबी में, और शायर को शायर इसलिए कहा जाता है कि वो अपने अल्फाज के ज़रिए क्या चीज़ एक्सप्रेस कर रहा होता है, जज्बात, और वो किस चीज़ को उजागर करने की कोशिश करता है अपने सुनने वालों में, उनके भी जज्बात, इसलिए उसको शायर कहा जाता है। असल में इसका, इस लफ्ज़ का ताल्लुक जज्बात से है। तो खैर, वश्शुअरा यत्तबिउहुमुल गावून, जब अल्लाह ताला शुअरा के बारे में बात करता है तो उसको इस तरह नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ जो लोग शेर पढ़ते हैं उनके बारे में बात हो रही है, बात ऐसे लोगों के बारे में हो रही है जो किसी भी तरीके से लोगों के जज्बात को बरगलाते हैं, जिनमें यह सलाहियत होती है कि वो लोगों को जज्बाती बना दें, वो भी एक तरह के शुअरा होते हैं। तो शुअरा का लफ्ज़ी माना तो वाकई जो शेर पढ़ते हैं उनके बारे में, लेकिन इसका जो वाजिब, जो जो उसका ज़्यादा वसी माना है, वो जो भी लोगों के जज्बात पर असर कर सकता है ना, उनका एक ग्रोह होता है, ऐसे लोग होते हैं जिनको, जो पहले ही गुमे हुए हैं ना, किसी राह की तलाश में हैं, वो उनके पीछे लग जाते हैं, जिसके पास पक्की हिदायत ना हो, पक्के गोल्स ना हो, पक्का उसकी ज़िंदगी में कोई हदफ ना हो, कोई नसबुल ऐन ना हो, तो फिर जो उसके जज्बात से खेल सकता है वो उसके पीछे लग जाता है। हो सकता है कोई रेडियो में किसी की पॉडकास्ट सुनता है, उसके गुस्से के जज्बात में उसको हाँ में हाँ मिलती है, वो उसकी बात सुनने लग जाता है, उसके पीछे वो उसका शायर है। कोई बहुत डिप्रेशन में है और वो गाने सुनता है, उस गाने में कैसे उसने मेरा दिल तोड़ा और क्या किया उसने साथ, और अब तो मेरे पास सिर्फ आंसू रहेगा, अब वो उसका, अब ये मैं ये तो उसने ऐसे लिखा जैसे मेरे लिए लिखा था, ओहो हो हो, ही इज़ माई फेवरेट, यू नो, मेरे दिल की बात कह दी उसने। वो शुअरा यत्तबिउहुमुल गावून, जो लोग गुमे हुए होते हैं ना, जो रास्ते से हटे भटके हुए होते हैं, वो उनके पीछे लग जाते हैं। और फिर कहा शुअरा के बारे में, यानी जो लोग एंटरटेनर्स होते हैं, उस जमाने के एंटरटेनर कौन थे, शायर, उनके यहाँ कॉन्सर्ट क्या होती थी, रात को सहरा में एक आग लगाई, बारबेक्यू की आग लगाई, सारे सर्कल बनाया उन्होंने, और एक जो है उसने शेर सुनाने शुरू किए, बाकी सारे अल्लाह, दैट्स इट, वो उनकी कॉन्सर्ट थी। अब आजकल तो ये बात बहुत आसान है समझने को, शायर का कामयाब होना और नाकाम होना उसका एक ही स्टैंडर्ड है, उसके पास एक ही मैट्रिक, पैसा नहीं, कौन कामयाब शायर और कौन नाकाम शायर, इसका फैसला कौन करेगा, आप बताओ, ऑडियंस, जिसकी ऑडियंस ज़्यादा है वो ज़्यादा कामयाब शायर है, जिसकी ऑडियंस कम है वो कम कामयाब शायर है, जिसके मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं यूट्यूब पर, उसका गाना उसका शेयर वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, वो ज़्यादा कामयाब है। तो शायर की करेंसी क्या है, शायर की दौलत क्या है, ऑडियंस, ऑडियंस, उसको सुनने वाले मिल जाएं, दाद देने वाले मिल जाएं, उसको पसंद करने, उसके काम को, उसके उसके गाने को, उसकी नज़म को पसंद करने वाले मिल जाएं, वही उसकी गजा है। होता यह है लेकिन कि वो एक बड़ा ज़बरदस्त गाना रिलीज़ करता है और करोड़ों लोग उसको व्यू करते हैं, उसका फेवरेट, उनका फेवरेट गाना बन जाता है, लेकिन फिर क्या,

और किसने पसंद किया, कितने पहले पसंद किया, और फिर उसको एक कॉमेंट मिला, आई एम टायर्ड ऑफ दिस सॉन्ग, इनफ ऑलरेडी, आई हेट दिस सॉन्ग, आई यूज टू लव दिस सॉन्ग, नाउ आई हेट दिस सॉन्ग. अब उसके दिल में तकलीफ शुरू हो गई. गाड़ी उसके पास है, बंगला उसके पास है, हेलीकॉप्टर उसके पास है, दिल में तकलीफ है उसकी, यार ये क्या हो रहा है. अब उसको किस चीज की बेचैनी है, अब क्या करना पड़ेगा भाई, एक नया गाना रिलीज करना पड़ेगा यार, वरना तो मैं एक दो महीने में तो मैं रेलेवेंट हो जाऊंगा और मेरी गजा खत्म हो. उसकी तो गजा खाना पीना तो है नहीं, उसकी गजा है ऑडियंस. तो अब उसको चाहिए एक नया गाना, नई रिलीज. अब उसने नई रिलीज की तो लोगों ने कहा ये पहला वाला बेहतर था, ये तो थका हुआ है. अब वो और परेशान कि अब मैं क्या करूं, दूसरे वाले की सक्सेस पहले वाले की तरह नहीं है, वो अब जरा पॉपुलैरिटी मेरी कम हो रही है. तो अब उसके दिमाग में आता है मुझे कोई नया टॉपिक पकड़ना पड़ेगा, कोई ज्यादा स्कैंडलस चीज करनी पड़ेगी, कोई और अजीबोगरीब हरकत करनी पड़ेगी, उससे और ऑडियंस को मैं शॉक करूंगा इतना कि वो फिर देखेंगे मेरी वीडियो. यानी उसको अपने सर्कल से बाहर जाके कुछ और ही हरकत करनी पड़ती है ताकि लोग उसको व्यू करें, और जब वो देखता है कि लोग उसको व्यू कर रहे हैं तो अब उसको नई बात समझ में आती है, जितना मैं गिरी हुई हरकत करूंगा उतना ऑडियंस बढ़ेगी. तो ऑडियंस बढ़ाने के चक्कर में वो अगर शुरू में इंसान था, थोड़ी देर बाद वो बंदर बन जाता है. बात समझ रही हो, ये जो एक प्रोसेस है. और मेरे ख्याल से अगर आप लोग कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को फॉलो करते हो, आप हर एक के दिमाग में कोई और एंटरटेनमेंट होगा जो इस प्रोसेस से गुजर चुका है, और फिर जब ये प्रोसेस शुरू होता है, इसकी ताबीर क्या की है अल्लाह ताला ने, क्योंकि उन लोगों के बड़े फॉलोअर्स होते हैं. अगर दुनिया में सोचो किसके फॉलोअर्स होते हैं, दुनिया में फॉलोअर्स होते हैं या तो मजहबी लीडर्स के, किसी बुद्धिस्ट के बड़े फॉलोअर्स हैं, किसी दलाई लामा के बड़े फॉलोअर्स हैं, किसी पोप के बड़े फॉलोअर्स हैं, ऐसी बात है ना. मुसलमानों में भी किसी इमाम के, किसी स्पीकर के. मुसलमान मुल्कों में तो कभी कोई ऐसे खतीब होते हैं कि वो खड़े होकर किसी जलसे में तकरीर करते हैं तो 2-3 मिलियन लोग ऑडियंस में होते हैं. तो मजहबी मैदान में फॉलोइंग होती है, और इस किस्म की इतने लार्ज नंबर्स की फॉलोइंग कुछ सियासी मैदान में होती है, और एक तीसरा मैदान है, वो कौन सा है, एंटरटेनमेंट का मैदान है, गाने शाने का मैदान है, कॉन्सर्ट्स का मैदान है, उसमें होती है, ठीक है ना. तो ये कुछ फील्ड्स हैं जिसमें लोग जमा हो जाते हैं बड़े नंबर्स के साथ और लोगों के पीछे आ जाते हैं, और इन तीनों का अगर आप अंदाजा करो, इन तीनों का ताल्लुक जज्बात से है. जो लोगों के जज्बात को सियासत में, जो लोगों के जज्बात को मजहब में, और जो लोगों के जज्बात को एंटरटेनमेंट में टच कर सकता है ना, उसकी ऑडियंस बड़ी हो जाती है. ऐसा ही होता है ना. और जज्बात का लफ्ज क्या है अरबी में, मशार, और उससे निकला है शायर, ठीक है ना. और उसको अगर अपनी ऑडियंस मेंटेन करनी है, उनके जज्बात को फर्दर करना है, तो उसको अब एक हर तरह से किसी ना किसी तरह मैं इस ऑडियंस को कैप्चर करता रहूं. उसके बारे में क्या मुहावरा कुरान ने इस्तेमाल किया, इस पूरी कहानी के बारे में क्या मुहावरा कुरान ने इस्तेमाल किया, कहते हैं अल्लाह ताला कहते हैं अलम तरा अन्नहुम फी कुल्ली वादिन यहीमून, तुमने देखा नहीं कि ये हर वादी में भटकते फिरते हैं खाने की तलाश में. ये हामा यहीमून इस्तेमाल हुआ करता था इंसान के लिए नहीं, ऊंट के लिए. जो ऊंट भटक जाता है सहरा में तो उसको कहीं पानी नहीं मिल रहा, तो एक वादी आती है, तो वादी में उतर जाता है कि मुमकिन है कि वादी के नीचे कहीं पानी मिल जाए उसे, कुछ खाने को मिल जाए उसे शायद. मसला ये कि वादी में उतरना तो आसान है लेकिन निकलना मुश्किल है. और दूसरा मसला ये कि वादी में उतरने से पहले आप ऊंचाई पर थे,

0: وادی میں اترتے وقت آپ نیچائی کی طرف جا رہے ہو اور نیچائی میں گرنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے, اور نیچے پہنچتے وقت آپ کو نہیں پتا آپ کون سے خطرے میں ہوگے, اور ہو سکتا ہے کہ یہ وادی ہی آپ کی موت ہو, اور اس میں اور آپ کو پتہ بھی نہیں کیسی وادی ہے, لیکن آپ اس میں اتر رہے ہو, اور ایک دفعہ اترے کچھ نہیں ملا تو ایک اور وادی میں اترنے کے لیے تیار, پھر ایک اور وادی میں اترنے کے لیے تیار. کیا تعبیر استعمال کی ہے, پیاسا اونٹ جو کسی بھی وادی میں اترنے کو تیار ہو کسی بھی غذا کی خاطر. اور یہ کیا ہے, وہ انٹرٹینر, وہ ایکٹر, وہ ایکٹریس جو کوئی بھی رول کرنے کو تیار ہے آڈینس مل جائے, کوئی بھی رول, کوئی بھی کسی قسم کی بھی میوزک ویڈیو بنا لو آڈینس مل جائے, میں کچھ بھی کر کسی بھی وادی میں میں اترنے کو تیار ہوں. اور اس تعبیر سے انسان کا ایک مقام پہلے اونچا ہوتا تھا, لیکن لوگوں کو امپریس کرنے کے چکر میں وہ اپنے آپ کو گرا رہا ہے, وہ نیچے گرتا چلا جا رہا ہے. اور اب ہم کیونکہ الگوریتم کے زمانے میں ہیں, انسٹاگرام, ٹویٹر, یوٹیوب اس زمانے میں ہے, الگوریتم میں کیا ہوتا ہے, جو بھی انفلوئنسر بننا چاہ رہا ہے اور جو انفلوئنسر بن جائے لوگوں کی فیلنگس کو انفلوئنس کرنا چاہ رہا ہے, جو بھی انفلوئنسر بننا چاہ رہا ہے وہ دیکھتا ہے کہ انگیجمنٹ کم ہو گئی ہے, ویوز کم ہو گئے ہیں, مجھے اور دیکھنا پڑے گا, ریسرچ کرنی پڑے گی, فلانے کے ویوز زیادہ کیوں ہو رہے ہیں, اس کے ویوز اس لیے زیادہ ہو رہے ہیں کہ وہ اس چیز کے بارے میں بات کرتا ہے, مجھے بھی اس چیز کے بارے میں بات کرنی ہوگی, مجھے بھی یہ کچھ کرنا ہوگا. یعنی اب آپ کا مقصد, لوگ آپ کے پیچھے آ رہے ہیں کیونکہ آپ ان کے جذبات سے کھیل رہے ہو, اور اب آپ لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو, آپ چیک کرتے ہیں ان کے جذبات کس طرف جا رہے ہیں, میں بھی اس طرف جاؤں. یتبعہم الغاوون لم تر انہم فی کل وات یہیمون, سبحان اللہ, کتنے 1500 سال پرانی تعبیر, اور آج آپ سوچو آج کیا ہو رہا ہے, کتنی 100% ایکوریٹ تعبیر اللہ تعالیٰ نے اتنے کم الفاظ میں بیان کی ہے اس محاورے کے ذریعے. آخری آج کی اس سیشن کی آخری تعبیر, ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط. خرچ کے معاملے میں اعتدال کرنا چاہیے نا, یعنی زیادہ نہ کرو, فضول خرچی نہ کرو اور کنجوسی نہ کرو. اور اس بارے میں سورۃ الفرقان میں بھی بات کی گئی ہے, والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما, سورۃ الفرقان میں بھی یہ بات کہہ دی کہ وہ ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرتے اور بہت کھینچ کر بھی نہیں رکھتے. لیکن یہاں سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ نے اس خرچ کے معاملے میں دو محاورے استعمال کیے. اب ان محاوروں کو سمجھتے ہیں, ان کا تعلق کس چیز سے, خرچ سے. ولا تجعل يدك, اپنے ہاتھ کو مغلولتن, اپنے ہاتھ کو زنجیر کے ساتھ اپنی گردن کے ساتھ نہ جوڑے رکھو. ایک ہوتی ہے ہتھکڑی جو دو ہاتھ اکٹھے کیے ہوئے ہیں, آپ اس طرح سمجھو کہ ہتھکڑی کا ایک جو کڑی ہے اس کی آپ کی گردن میں ہے اور دوسری آپ کے ہاتھ کے ساتھ لگی ہوئی ہے, ایسے آپ کا ہاتھ یہاں پھنسا ہوا ہے. مغلولتن الى عنقك, آپ کا ہاتھ یہاں تک پھنسا ہوا ہے, یہ کیا عجیب سی. اور دوسری ہے, اور اس طرح نہ ہو جانا کہ دونوں ہاتھ کھلے ہو کے چل رہے ہو ایسے, تب سوتھا کل البسط, جتنے ہاتھ پھیلا سکتے ہو اتنے پھیلا لو. یہ تعبیر ہے. اب اس سے مراد کیا ہے کہ آپ پیسہ آپ کا جیب میں ہے, آپ خرچ کرنے لگے ہو, دودھ خریدنے لگے ہو, بریڈ خریدنے لگے ہو, انڈے خریدنے لگے ہو, تو ایسے مت کرنا کہ عام خرچ کے لیے بھی ہاتھ ایسے گردن کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ جیب تک پہنچنے میں لگے کہ تم اپنے آپ کو پھانسی دے رہے ہو. لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك, ایسے مت کر دینا کہ عام خرچوں کے لیے بھی تمہیں لگے کہ تمہیں کوئی موت دے رہا ہے. مجھے کچھ لوگوں کے بارے میں پتہ نہیں, یہاں پہ بھی ایسا ہوتا تھا, مجھے پتہ نہیں تھا, मुझे एक कपल मिला, बेगम शिकायत कर रही थी अपने शौहर की, कहती है मेरी भी जॉब है इनकी भी जॉब है, जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो सिर्फ अपने ऑर्डर का पे करते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अब तो फिर दूध का भी कैलकुलेट करने पर, कितनी कितनी डाली थी चाय में, उसको कैलकुलेट करके बजट डिवाइड करते हैं। ये क्या है, तजालिया दका मगलूलतन इला उनुकिक। दूसरी उसकी उल्टी ताबीर क्या है, ला तबसुतहा कुल्लल बस्त। आप अगर किसी दुकान में जाओ, आइल्स होती है ना ग्रोसरी स्टोर के अंदर, उसमें ऐसे हाथ खोल के चलो, क्या होगा, जिस चीज को हाथ लगे वो कार्ट में गिर रही है आपके, है ना। कहने का मकसद ये है कि अगर आप हाथ खोल के चलोगे ना, ऐसी ऐसी चीजों को छूओगे जिसको आपके छूने का कोई बिजनेस नहीं था, आपको इतनी स्पेस चाहिए थी, आप इतनी स्पेस लेके चल रहे हो ना, तो आप खामखा ऐसी चीजों को टच करोगे जिनको टच करने का कोई मकसद नहीं था आपका। जब किस तरह खोल के करोगे तो इस तरह खर्च ऐसा और ऐसी चीजों पे जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, जिसका कोई मकसद नहीं था। ला तब सोथा कुल्लल बस्त। और तो इसी तरह इस ताबीर के जरिए अल्लाह ताला ने कंजूसी और फजूल खर्ची दोनों के बारे में एक तस्वीर खींच दी। ओके, पहिया खाविया आला उरुश, ये कर दिया, आखिरी होगा आपका। अल्लाह कहते हैं बस्तियों के बारे में जो तबाह की गई, अल्लाह ताला ने कुछ बस्तियां तबाह की थी ना, उनके बारे में कहा है कि वो अपनी छतों पर उलट दी गई, अपनी छतों पर उलट दी गई। आप मुझे बताओ, आप क्या अंदाजा करते हो क्या किया गया होगा, अगर बस्ती छत पे उलट दी गई है तो क्या किया गया होगा, यानी बस्ती उठाई और पराठे की तरह फ्लिप कर दी है शायद, या फिर ये मुहावरा इस्तेमाल हो रहा है। और ये मुहावरा कुरान में दो किस्म के सियाक में इस्तेमाल हुआ है। और उरूश का लफ्ज समझ लेते हैं, उरूश के दो मायने, पहले यहां से शुरू करते हैं बात। खावियतुन अला उरूशिया, अर्श तो आपको मालूम होगा, अर्श आम अरबी जबान में अर्श छत के लिए इस्तेमाल होता है, और अर्श ऑल्सो जो कमजोर पौधे होते हैं ना, जैसे अंगूर, और उसके जो उसका जो तना होता है कमजोर सा होता है, उसके लिए आपको जमीन में एक जो है वो लकड़ी डालनी पड़ती है और उसके इर्द गिर्द वो लिपटता है, ऐसे पौधे को भी अर्श कहते हैं, इसको भी अर्श कहते हैं। तो अर्श के दो मायने हैं अरबी में, एक तो छत और दूसरा कमजोर पौधा, ठीक है। अच्छा, अस्हाबुल कहफ के बारे में, सूरतुल कहफ में जो किस्सा है दो बागबानों का, आपको शायद इल्म होगा, उसने बाग बनाया, उसके इर्द गिर्द उसने दरख्त बनाया अपने बाग के, और दरमियान में बारीक और नाजुक किस्म के पौधे रखे। नाजुक पौधे दरमियान में इसलिए थे कि हवा चले तो उन पौधों पर नुकसान नहीं होगा, क्यों, क्या हिफाजत करेगा उन पौधों की, वो इर्द गिर्द के दरख्त, ठीक है ना। अब अल्लाह ताला ने जब उसको सजा दी और उसका बाग बर्बाद किया तो कहा वहिया खाविया अला उरूशिहा, और ये बाग इसका उलट पड़ा उरूश के ऊपर। वहां छत की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, पौधों की, यानी जो दरख्त हिफाजत के लिए लगाए थे, आंधी ऐसी आई कि वही दरख्त उन पौधों के ऊपर गिरे, जो सिक्योरिटी थी उसी वही थ्रेट बन गई, वही नुकसान बन गई, वहां वो बात की जा रही है, ठीक है। लेकिन बाकी बस्तियों के बारे में खावियतुन अला उरूशिहा, इसको भी समझ लें। मैंने कहा था उरूश का एक मायना तो है वो पौधा, नाजुक पौधा, दूसरा मायना क्या था, छत। जब कभी कोई तूफान आता है, बहुत तेज बारिश आती है, या ओले पड़ते हैं, या कोई विंड स्टॉर्म आता है, टोर्नेडो वगैरह आता है, किसी को तूफान आता है, बिल्डिंग में सबसे ज्यादा नुकसान किस हिस्से को होता है, छत को होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपोज चीज जो है वो आपकी छत है, फाउंडेशन जो है वो आपकी बची हुई है, वो सबसे नीचे है, दीवारें सिक्योर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान किसी भी जो जंग के दौरान अगर ऊपर से बमबारी हो रही है, या पुराने ज़माने में जो कैटापोल्ट इस्तेमाल होता था उससे बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे हैं, कहाँ डैमेज होनी थी? छत पे। अच्छा, छत पे अगर जंग ना भी हो रही हो, तूफान ना भी आ रहा हो, किसी ने घर खरीदा हो, तो उसको बताएं मसला कहाँ पे होता है? ज़्यादा से ज़्यादा छत पे होता है। उसमें सीलन आ जाता है, उसमें सुराख हो जाता है, उसमें जानवर घुस जाता है, उसमें से पानी लीक होना शुरू हो जाता है। मसले हमेशा कहाँ के होते हैं? छत के। और एक दफ़ा छत पे मसला हो जाए, सारे घर में मसला शुरू हो जाता है, उसकी बार बार रिपेयर करनी पड़ती है। अब अल्लाह ताला ने इतना तो बता दिया कि कुछ बस्तियां तबाह बर्बाद हो गई। जब तबाह बर्बाद हुई तो छत डैमेज हुई कि नहीं? और लेकिन छत को मेंटेन करना और उसको दोबारा फिक्स करना, रिपेयर करना, उसकी मरम्मत करना, उसके लिए कोई था कि नहीं? वो तो सब मर चुके। अब छत की किसी ने रिपेयर नहीं की, किसी ने मरम्मत नहीं की, तो कुछ 5 साल बाद, 3 महीने बाद, 10 साल बाद उस छत ने क्या करना है? उसने गिर जाना है। अब चार दीवारी रह गई लेकिन छत बीच में गिर गई। इतनी बात समझ में आई? अब जो चार दीवारी रह गई उसकी सपोर्ट, असल में जो दीवारों को जोड़े हुए थी और दबाए हुई थी वो छत थी। अब वो दीवारें अकेली खड़ी हैं, अब उनके अंदर सीलन जा रहा है, हवा गुजर रही है, मॉइस्चर जा रहा है, वो कमज़ोर होती चली जा रही हैं। और फिर 10, 15, 20, 100 साल गुजरने के बाद वो दीवारें भी गिरने लगी। और जब वो गिरी तो किसके ऊपर गिरी? छत के ऊपर गिरी। वही खाविया आला उरूशिहा, छतों के ऊपर वो गिर पड़ी। यानी यही नहीं कहा कि बस्तियां बर्बाद हुई, सैकड़ों साल बर्बादी में वीरान रही, यहाँ तक के छतें भी गिरी और उसके कई साल बाद दीवारें भी छतों के ऊपर गिरी। और जगह कहा वल्मुतफिका था अहवा, और फिर उनको दबा दिया गया। जैसे अगर आप रोमन रूइंस के पास जाएं या कोई पुराने जो आसार हैं कदीमा उनके पास जाएं, आपको सतून नज़र आएंगे, ना दीवारें ना छत, कुछ नज़र नहीं आएगा, बस सतून नज़र आएंगे। क्यों? छत कई सालों पहले छत गिर चुकी और उसके कई साल बाद क्या हुआ? दीवारें गिर चुकी और वो सब दफन भी गई ज़मीन के अंदर, वो सब थोड़े थोड़े सतून निकले हुए हैं, वो नज़र आ रहे हैं। और ये ताबीर इतने थोड़े अल्फाज में अल्लाह ताला ने सैकड़ों साल की तारीख को बयान कर दिया। वही अखावियतुन अला उरुशिया। तो इस पे इंशाल्लाह
1: सब्सक्राइब नाउ टू द बेगिना YouTube चैनल टू वॉच द रेस्ट ऑफ दिस सीरीज एंड मोर ग्रेट कंटेंट फ्रॉम उस्ताद नुमान अली खान। कमिंग अप नेक्स्ट टाइम ऑन आखिरी मौजज़ा।
0: लेकिन जब मुश्किलात आती हैं तो फिर वो कहते हैं ये क्या पागलपन है, अनुमिनु कमा आमन सुफा, ये जैसे ये बेवकूफ़ ही मान लें वैसे हम ही मान लाएंगे। उसके बाद तनकीद शुरू हो जाती है, उनकी ज़बान से बड़े चुभने वाले अल्फाज निकलने शुरू हो जाते हैं उनकी ज़बान से। कब? जब मुश्किलात आती हैं। तो असल फ़र्क होता है, मुनाफिक है तो उसके अंदर एक ही चीज़, लेकिन ज़ाहिर कब होती है? जब मुश्किलात आती हैं। जब मुश्किलात नहीं होंगी तो ईमान की बात करेगा, जब मुश्किलात आएंगी तो अपने असली रंग दिखाएगा। अच्छा,
2: अस्सलामु अलैकुम। इन लूटन एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज इट इज नाउ टाइम फॉर सलात अल इशा।
3: लूटन और इसके मज़ाफ़ात में नमाज इशा का वक्त हुआ चाहता है।
4: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.